0: फतेह बागुरु जी की फतेह बागुरु जी की फतेह
1: वाहेगुरु जी का
0: खालसा
1: वाहेगुरु जी की फतेह।
2: पौड़ी वड्डी क्या वड्डियां किस कहना कहना जाए सोकता कादर करीम दे जी हरि जग संभाए साईकार कमावनी त्रिशोडी तिन्ने पाए नानक की बाहरी हर दूजी नाही जाए।

गुरु बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गौर प्रसाद चक्र चिहन आर बरन जात आर पात नहन जिह रूप रंग आर रीख पीख को कह ना सकत केह अचल मूरत अनभाव प्रकाश अमितोज कह जै कोट इंद्र इंद्राण साह साहाण गण जै त्रिपावन महीप सुर नर असुर नीत नीत बान तृण कहत त्व सर्व नाम कथय कवन करम नाम बरनत सुमत दंडौत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा खह प्रभु नानक देकार हाथ हर जन संत कर किरपा पगलायण गुर सबदी हर भज सुरत समायण मेरे मन हर भज नाम नारायण हर हर कृपा करी सुखदाता गुरमुख भव जल हर नाम तरायण संगत साध मील हर गायण गुरमती ले राम रसायण गुर साधु ज्ञान अमृत सर नायण सब किल विख पाप गए गावायण तू आपे करता श्रेष्ठ तरायण जन नानक मेल तेरा दास दसायण

तेरा दास दसायण सो कहौ टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर।

राग गुजरी महला चौथा। हर की जन सतगुर सतपुरख, बिनो करो गुरपास। हम कीरे कर्म सतगुर शरणाई, कर दया नाम प्रगास। मेरे मीत गुरदेव, मुको राम नाम प्रगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सुखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन के बड़ भाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास। हर हर नाम मिले त्रिवतास, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सतसंगत, जित हर रस पाया। मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवा। काहे रे मन चित वह उद्दम, जा आहर हर जियो परया। सैल पत्थर मैं जंतु पाए, ताका रिज के आगे कर तरया। मेरे माधव जी सतसंगत मिले सो तरया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सुखे काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनिता, कोई न किसकी तरिया। सिर सिर रिज कसम बाहे ठाकुर, काहे मन भव करिया। उडे उडे आवे सै कोसा, तिस पाछै बचरे शरिया। तिन कवन खलावै, कवन चुगावै। मन मह सिमरन करिया, सब निदान दस अष्ट सिदान। ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बल बल सद बल जाइए। तेरा अंत न पारा वरिया, सब निदान दस अष्ट सिदान। ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बल बल सद बल जाइए। तेरा अंत न पारा वरिया। राग यासा महला चौथा। सो पुरख एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन, हर पुरख निरंजन। हर अगमा अगमा पारा, सब त्यावह सब त्यावह तुद जी। हर सच्चे सिरजनहारा, सब जी तुम्हारे जी। तू जिया का दातारा, हर त्यावो संतो जी। सब दुख विसारन हारा, हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी। क्या नानक जंत विचारा, तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी। हर एको

रंग माया कै रहाउ, जप तप संयम धर्म न कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच करम, शरण परे की राख हो शर्मा। जप तप संयम धर्म न कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच करम्मा,

दुष्ट दोख ते लेहो बचाई सवैया। पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब है बहु भेद कहें हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहियो सब तो हे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गहो तुहार द्वार बाही गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। सगल द्वार को छाड़ के गहो तुहार द्वार बाही गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां शब्दोतां गावहो हरि केरा मन जनी वसाया। कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार यहो करे तेरा कार्ज सब सवारना। सबना गल्लां समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। सचे साहिबा क्या नाही घर तेरा घर तां तेरा सब किश है जिस देह सो पावे। सदा सिवत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनका मन वस्या वाजे शब्द कनेरे कह नानक सचे साहिब क्या नाही घर तेरा। साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आए वस्या जनिशा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दियाँ ये वडियाइया। कह नानक सुनहो संतहो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुदवस कीते काल कंटक मारिया। तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख होआ तित कर अनहद वाजे। आनंद सुनहो वड भागी हो

तरे सगल विसूरे दुख रोग संतापयुतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पहे सर से पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदावणी महला पंजवां थाल विच तीन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सधारो जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो एह वस्त तजी न जाई नित नित रख और धारो तम संसार चरण लग तरियै सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जा तो नाही मैं ना जोग कीतो मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पयो तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिलै ता जीवा तन मन थीवै हरिया तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिलै ता जीवा तन मन थीवै हरिया वाहिगुरु जी का खालसा।

प्रभदत्तदातार पर्याजाचकिक शरणा मिले दान संतरेन जिह लग पवजल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावै देहो दर्श मन चाओ भगत एह मन ठहरावै बलियो चिराग अंधियार में सब कल उदरी एक नाम धर्म प्रगट सगल हर भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म गली असी चंगिया अचारी बुरिया मनोक सुद्धा कालिया बाहर चिटविया रीसा करे तिनाड़िया जो सेवह दर खड़िया नाल खसमै रतियां माने सुख रलिया हुंदे तान नितानिया रही निमाननिया नानक जन्म सकार था जे तिनकै संग मिला मैं मूर्ख की केतक बात है कोट पराधी तरिया रे गुर नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भास न परिया रे गुर नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भास न परिया रे सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सुपाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों झटी तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर शांद शाह जिस पास बैठिया सोही है सबना दावी साह सज्जन सच्चा पातशाह सिर शांद शाह जिस पास बैठिया सोही है

सोरठ महला पंजवां हमरी गणत न गणिया काई अपना बिरद पशान हाथ दे राखी कर अपने सदा सदा रंग मान हमरी गणत न गणिया काई अपना बिरद पशान